0: सीधा कुरा प्रश्न विचार
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क अहिले बिहानको
2: कोसान किसान
3: अ कम्प्लीट पाइपिंग।

तेरा अक्सम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझ तू कितना ब्लडी फुल है। लुक ये मेरा अक्सम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है।